0: दोबारा रेडियो दे प्यारे श्रोतियो, हफ्तावारी प्रोग्राम कभी दरबार दे विच हरवान सिंह वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे। प्यारे श्रोतियो, अज 25 अक्टूबर 2020 दिन एतवार है, शाम दे 5 बजे हैं ते हुण साडा 27वां कभी दरबार शुरू होने जा रहा है। ते इस कवि दरबार का आगाज करने लई मैं पटियाला तो शायरा ते गायिका निर्मला गर्ग जी नूं सदा देण जा रहा हां कि ओ एक रचना लेके हाजिर होण। ते इस वार उन्होंने साडी फरमाइश दे उत्ते पंजाबी कवित्री सलीम मंड जी का एक गीत तैयार किया है, आस करते हैं कि तुसी पसंद करोगे। निर्मला गर्ग जी, थोड़ा दुआबा रेडियो के मंच से निघा स्वागत है।
1: एक

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रेंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने दे, गिला की करा जमाने दे, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगाने च पोगल नू भेज के माए, बेगाने च पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक।

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

तू अपने बेले आबाद रखी, जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

पासे खुदाइया सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा

मैं सदा तेरे रादार उड़ारे हानी निकल गया रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादार उड़ा रे हानी निकल गया रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू कर

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत कर दे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असीं मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसी नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कर कर के मैनू याद रोया करेंगी तू, कर कर के मैनू याद रोया करेंगी तू, पलकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू, कर कर के मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय कर कर के मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कु

तैनू याद आएगा, किदां हिजर दे दाग, किदां हिजर दे दाग, तो यह करेंगी तू करी करके मैनू याद।

इश्क इश्क ना करिया कर जिंदे, इस इश्क ने कई बर्बाद किते। किसे तपदे थलां विच जान दित्ती, हाय जान दित्ती। किसे तप